0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: बजे बजे चाकुती रेडियो ये बरी तो भाई मुझे जो रेडियो रे रेडियो बरसेंगे रे तमु केरी समाचार खल खाई बो
1: हम दिने गम ये वो जो मैं हमें ये ध्यालो से भिजो
0: बर्थाली बुदे सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सर्व केंद्रीय सदस्य रे लगजुम दक्याले आरक्षण कोटर बैक केंद्रीय सदस्य में उम्मीदवार की बरी प्लूलो जाना नेता मैं न्यू
2: क्या मैं रेडियो बरसेंगे तो क्या ली दिन नई नानर बे आठ बजे खबर तमु के समाचार ये बरी आमित ओ

नगरपालिका लमजुंगरबे तायनास तहरी तलिबाटी वर्षहरी खेदो मैली चोबा खोप कार्यक्रम छिम अभियान हरी 1,49,000 खेदो मैली खोप पिम नमुना सामुदायिक अस्पताल प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिन सशस्त्र प्रवी बहुमुक्ति स्वागत प्रजातकीय अस्पताल निरीक्षण दे लमजुंगरबे पिउनुना विद्यार्थी मैदे तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जी छात्र वेदी पिमा

sekarang itu tak efektif. Langsung arbe nasa toh moderi le, berisu moderi. 4 crore mui lagi awasik ramad. पुरा तपा महालेखा प्रतिवेदन जो वही नो चिला बे आठ रायों नासा तोहरी आर्थिक वर्ष 81-82 ना कुल बेरुजु मुई मध्य भी 3 करोड़ 84 लाख 96,000 532 रुपए लागी आवश्यक प्रमाण कागजात में आतोहबा महालेखा प्रतिवेदन जो वही नो आर्थिक वर्ष 82-81 ना संपरिश्र प्रतिवेदन महालेखा जे ती दिन हुई सो मात्रा यो सार्वजनिक ललो महालेखा ना प्रतिवेदन अनुसार जिल्लारी भुगतानी मुई मध्य भी तय भन्दा मुई ले मध्यनेपाल नगरपालिकाले आवश्यक प्रमाण कागज योला आँखा बा बीमो मध्यनेपाल नगरपालिका मात्र यो 85,49,849 रुपियाँ मै भुक्तानी मैरी आवश्यक प्रमाण आयोग प्रतिवेदन जी वही म छलायो जिल्लाबे मर्सिङ नगरपालिकाले पनि आवश्यक प्रमाणमा आयोग नासा तह मधेरी पर्दिनु मर्सिङ दिदे पनि 82,52,632 रुपियाँ मै बेरोजु मैले आवश्यक कागजातमै आयोग जिल्लाबे दुर्गम महादिवा दुधपोखरी नगरपालिकाले पनि भुक्तानी मुगा मै मधेरी लालपरी लाभ मै मधेरी 52,47,779 मै लागि आवश्यक प्रमाण आयोग बीमो चुबाहेको रायन नगरपालिका विषय 65,83,068 रुपियाँ प्रमाण आयोग प्रतिवेदन डिफ्रीवा अनुसार जिल्ला सुन्दरबजार नगरपालिका 59,1,378 रुपियाँ मुरी आवश्यक कागजातमा आयोग सदरमुकाम समेत मुवादेश नगरपालिका विषय 12,79,047 रुपियाँ मुई आवश्यक प्रमाण आयोग प्रतिवेदन जी वही मचु बाहेक जिल्ला दोर्दी नगरपालिका 3,96,779 रुपियाँ मुई आवश्यक प्रमाण आयोग बीमो आवश्यक प्रमाण पेश अथवा शीर्षक मध्य तयो तयो भन्दा कम बेरोजु कोलसत्ता नगरपालिका मु कोलसत्ता नगरपालिकाले विषय 2,56,000 रुपियाँ मु बेरोजु मु मध्य आवश्यक प्रमाण आयोग महालेखा प्रतिवेदन जी उही मु लङ्जङ्गरबे तयो नासा तहरी चलिब आर्थिक वर्षरी खेदोरी शोभखोप कार्यक्रम छिमो जिल्लाले चल्दै खबर खेदोरी चोब खोप कार्यक्रम नोर्बे पहिलो दिन दोस्रो चरण लैमरी तिरी नभा खेदो मैले खोप चोब कार्यक्रम छिम जिल्ला नोभा भेटनेरी अस्पताल दिएर पशु सेवा विज्ञ केन्द्र अनुसार लिसुबे चरणले बेसररी वडा नम्बर 10 बालो नासापालिका दिएर दोस्रो चरणले बेसर नोभा पिउलो नास नगरपालिका खोप अभियान शुरू ललो जिल्लाली छेवा पशु पुनः खोप कार्यक्रम नोरी करिब 2,00,000 डोज चुनिभा कार्यालय जीबीमो नासा तहरी चले खप खोप कार्यक्रम नोरी 1,49,020 खेदो मैदे 1,75,000 डोज खोप पिभा कार्यालय जीबीमा थिए कार्यालय अनुसार अभियानले तय भन्दाले मध्य नेपाल नगरपालिका मात्र 26,342 डोज खोप पिएमा सुबाहेको बेसरहरू 29,229 तोर्दीले 26,378 वर्षङ्गीले 24,811 दुधपोखरीले 23,154 रायनसले 20,603 सुन्दरबजारले 18,825 तेह्र कोलसोथारी 13,859 खोपी वा कार्यालय भीम खोप अभियान होली तिरी नई खबर खेदमा मध्य 96,554 र 17,748 क्यू 9,752 म्यादी र क्लियरी 20,621 मयूरी 3,909 मयूरी 360 बुंगुरारी चोबा पगार्ब खोपी वा अभियान खोरेट पीपीआरदी रेबिस लम्पी स्किन क्लासिकल स्वाइन फिभर भ्याकुती दिएर चर्चरी रोग विरोध खोप पिभा कार्यालय लम्जुगर्बे सुन्दरबजार मुभा नमुना सामुदायिक अस्पताल प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनाल दिएर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुम्बा हेडक्वार्टर लम्जुगर्बे प्रमुख दिएर सशस्त्र प्रहरी

0: परिषद विकास अधिकारी जे टेवा लैब ते दिन वैसो मात्र सम्बन्धित कार्यालय रे प्रमुखैन रूपारी खबा न्यून जाना दे अस्पताल जे औपचारिक रूपारी ते म मानव विकास दे सामुदायिक सेवा एस डिशियल व्यवस्थापन तय खबा अस्पताल जी आयोजना लबा स्वागत कार्यक्रम रे अस्पताल प्रमुख हिमेन्द्र श्रेष्ठ जी अस्पताल व्यवस्थापन सेवा प्रवाह दे संचालन बारे जानकारी पेलो छु अवसर रे प्रमुख जिला अधिकारी खनाल जी अस्पताल चेक जांच समेत लैमु निर्जन लबाली सुपोईमारी खनाल जी अस्पताल जी प्रभावकारी रूपारी सेवा प्रवाह परिवार सेवाग्राही तकिया गुनासो खला ललातबा बेम लमजुमार बै पिउनु जना तमु विद्यार्थी मैले तमु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालजी छात्रवृत्ति पेम प्रतिष्ठानजी जिल्ला भरिदेखि आयो आवेदन पिप विद्यार्थी मध्ये परीक्षा दिएर अन्तर्वार्ता आधारले पिउनु जनाले चुनिदिनु छात्रवृत्ति यो मध्यमेरे दुधपोखरी नासापालिगर मुभा कलाबारी माध्यमिक विद्यालय छात्र वर्ष तमुस्यो सानो काभ्रे महावीर भे छात्र सुश्री तमुसे त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय भुजुङर भे छात्र दिपेन्द्र तमुदेर जनविकास माध्यमिक विद्यालय चण्डी डाँडर भे छात्र दिव्य तमुस्यो पर्दिमो प्रतिष्ठान सचिव कञ्चन तमुइन अनुसार समुदायले खेवा मेहनत दिएर आर्थिक रूपले कमजोर मुभा विद्यार्थीमा शैक्षिक उन्नतिका लागि संयुक्त उद्देश्य प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति खबा बिहु छात्रवृत्तिजी विद्यार्थी नीति थेमे खेवा फेरि थप प्रेरित लबेर उद्देश्य खेवाई लागि सहयोग तथा विश्वास समेत किम लम्जुङ दर्पण दैनिक तेह्रौं स्थापना दिवस ऐन अवसरले सदरमुकाम विश्वरी आयोजनालाई खबाङ हिरो भई पत्रकारिता तालिम छिम तालिम दुई संविधान सभा सदस्य जमिन्द्र मान खालिन प्रमुख आतिथ्यातर दिएर लम्जुङ दर्पण दैनिक प्रकाश कृष्ण केसी अध्यक्ष तरै छेलो कार्यक्रम मरि पैमरी प्रमुख अतिथि घरेजी लिसुपे समयले सूचना दिएर संचार प्रविधि तीव्र विकास बालयो पत्रकारिता स्वरूप समेत परिवर्तन तय खाबा बिमो थिति सामाजिक सञ्चालन सहित जिम्मेवारी प्रयोग लैमरे तथ्य आधारित समाचार सम्प्रेषण लाल परिवारी जोड पिमो फैसिमिदे पत्रकारी दिएर संचार दकी आकर्षित लब छैली तालिमजी महत्वपूर्ण भूमिका खेवा बिमो तालिमजी नव पुस्तै सशक्तिकरणै लागि सामाजिक सञ्चालन प्रभावकारी उपयोग कन्टेन्ट सृजना लबेर मल्टिमिडिया विषयले प्रशिक्षण समेत पिलो कार्यक्रमले नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा लम्जुङको उपाध्यक्ष वसन्ता भट्टाजी डिजिटल युगारी पत्रकारिता अवसर दिएर चुनौती बारे चर्चा लैमारे सत्य निष्पक्ष लिएर विश्वसनीय पत्रकारिता आवश्यकता अझ बढी मोबाइल बिम थिजी सामाजिक सञ्जालले खबर सूचना होइन तथ्य परीक्षण लैमारी मात्र सार्वजनिक लबा लल परिवारी जोड बिम लम्जुङको सुन्दर बजार मै आफ्नो तब स्वास्थ्य शिविरहरू 162 जना सेवा के म लम्जुङ उद्योग वाणिज्य संघ सुन्दर बजार इकाइन आयोजना एसोसिएस नमुना सामुदायिक अस्पताल सुन्दर बजार होइन प्राविधिक सहयोग दिएर सुन्दर बजार नगरपालिका होइन स्वास्थ्य शाखा दिएर विभिन्न सहकारी संस्था होइन सहकारी सञ्चालन रेखामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर तका 162 जना सेवाग्राही मे जी सेवा के म शिविर सेवा किमा मध्ये 102 जना मुरीमै दिएर 60 जना पिउमै म शिविर नोरी 102 जना जी सैन्य सेवा 80 जनाजी किडनी रोग सेवा 21 जनाजी फिजियोथेरापी सेवा 125 जनाजी मि सम्बन्धी सेवा किमो उद्योग वाणिज्य संघ सुन्दर बजार इकाइ अध्यक्ष आनन्दलाल श्रेष्ठ अध्यक्षता कोष अध्यक्ष सुरेन्द्र घिमिरे सहजीकरण दिएर एसजीसीएस नमुना सामुदायिक अस्पताल प्रमुख हिमन्त श्रेष्ठ नीति तुरी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तलो शिविर दकिया नासाथेमे समुदाय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू पहुँच विस्तार तब देवालय रोगैन पहिचान दिएर असर दिव रोगै निरीकरण सहयोग तथा
1: मर्सिङ फेरि तखुबे लागि छ गयो फेरि छेउ भन्दा वैसो कर्बे फेरि देखे

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ्गी एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो।
3: राष्ट्रको शान किसान।
2: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स।

0: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: हमें कहाँ फेसियल, नेल आर्ट, मेहंदी आर्ट, हेयर स्ट्रेट, ब्राइडल मेकअप, मेनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलर, हेयर कटिंग, क्लिंसिंग संगे ट्रेनिंग को समेत व्यवस्था रहेको छ।
1: टू फाइटर तारा गुरुंग मीरा ब्यूटी सलून एंड ट्रेनिंग सेंटर विशेषर नगरपालिका स्वाद पुरानो बैंक चोक लमसुंग संपर्क 9841626344 9841626344।
2: बेसी सहरी खोले रेडियो मर्सिङ क्याले यो भाषाली कत्ते छाबा कुए खैमु खोइन ती गल्छ्यो
3: ए छब्बीस तिस घरी बालोटी र रेडियो मर्सिङ ओ गल्छ्यो
4: क्यों यो आफै रेडियो मर्सिङ एफएम 95 मेगाहर्ज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.